বিদেশ গো খবর। টর্কি কো ইস্তান বুলবা ভবন ভৎকিতা তিন বালিক বালিকা সহিত পাঁচ জনাকো মৃত্যু ভয়েকো ছ ভনে নৌ জনার জীবিত উদ্ধার গরিয়েকো ছ। ইস্তান বুলকো এশিয়ালি ক্ষেত্রমা বিহিবার বিহান ভবনকো তলো ভাগমা বসিয়েকো মাথিলো তলা পনি ভৎকির ভগ্নাবশেষ পরিণাম ভয়েকো হুন সক্ছ। গভর্নরকো কার্যালয়মা অনুসার ভগ্নাবশেষ পুরিয়েকো খোঁজি তথা উদ্ধার কার্য শুক্রবার বিহান অন্তিম পীড়িতকো শব ফেলা পরিসঙ্গে সম্পন্ন ভয়েকো ছ। মৃত্যু হুনেমা পাঁচ র দশ বর্ষকা দুই বালবালিকা বার বর্ষকা এক বালক তথা অন্য দুই জনা রয়েকো ছ। ইস্তানবুলকো উপমেয়র নুরি আসলানকা অনুসার সন 1987 নির্মাণ গরিয়েকো উক্ত ভবনমা শুরুমা চার তলা বনাইকো থিয়ো ভনে বাকি তলা পছি থপিয়েকা থিয়ে। ভবন ভৎকেপছি আশপাশকা ক্ষেত্রমা বসবাস গর্ने 55 জনালাই সাপ্তাহিক রূপমা সুরক্ষিত স্থানমা সারিয়েকো ছ। টর্কিকা সঞ্চার মাধ্যমক অনুসার ভবনকো ভুইতলামা রয়েকো পসলকী ব্যবস্থাপকলে গত অপ্রিলদেখি নেই সংরচনামা চিরা দেখিয়েকো বতাউনু ভয়েকো থিয়ো। দুর্ঘটনাকো কারণ থপ বারে अनुसन्धान भइरहेको छ। अब खेल खबर। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका चौध कुपा धुवाकोटमा आयोजना हुने छैटौं कुवा कप तथा मिनी प्याराथन दौड प्रतियोगिता 2083को तयारी तीव्र पारिएको छ। कुपा युवा सभाको आयोजनामा असोज 30 गतेदेखि कुपा खेल मैदानमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सात ए साइड कुरा नकआउट फुटबल सँगै मिनी प्याराथन दौड आयोजना गरिनेछ। प्रतियोगिता सफल बनाउन देश तथा विदेशमा रहेका कुपावासी खेल प्रेमी र सहयोगदाताहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। आयोजकका अनुसार हालसम्म प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतियोगितामा संकलित रकमको केही हिस्सा हालै बाढ़ी पहिरोमा प्रभावित परिवारलाई खर्च गर्ने गरिएको थियो। फुटबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले 1,03,333 रूपियाँ सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो हुने टोलीले 55,555 रूपियाँ पाउनेछ। त्यस्तै सेमी फाइनलमा पुग्ने टोलीलाई 15,000 रूपये प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाड़ीले 5,000, उत्कृष्ट गोल रक्षक लिएर सर्वाधिक गोलकर्ताले जनही 4,000 रूपये पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। फुटबलमा सहित हुन टोली दर्ता शुल्क 9,000 रूपये तोकिएको छ। त्यस्तै मिनी प्याराथन दौड़मा प्रथम हुने टोलीले 24,000 र दोस्रो हुने टोलीले 12,000 रूपये सहित मेडल सम्मान पत्र प्राप्त गर्नेछ। मिनी प्याराथन भने आगामी कार्तिक 8 गते आयोजना गरिनेछ। फुटबल प्रतियोगिताका लागि टोली दर्ता गर्न अन्तिम मिति असोज 27 गते र टाइसिटले प्रकाशित असोज 28 गते तोकिएको आयोजकले जनाएको छ। खेलकुदको विकास सँगै विपदमा प्रभावित परिवारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागि हो। बिहान 6:35 बजेको समाचार सक्नु अघि अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पूर्णै पटक।

दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को। एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

को अवसर साथ ही हर एक महीना होने भाग्यशाली उपहार में आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जीतने मौका साइड बाई साइड र मल्टीडोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी र सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सर्फ एक्सेल निःशुल्क डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दसैंको खुशी घर घर में उपहार।